0: कार
1: मूर्ख अंधो असंख चोर हराम खोर
0: असंख अमर कर जाहे चोर असंख गलवड हत्या कमाए
1: पापी पाप कर जाए संख कूड़े और कूड़े फिराहे
0: असंख मलेश मल पखाहे असंख

0: ना ही कोई वैण गुण कीते भगत ना होए
1: बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ
0: वेला वक्त कवन कवन थत कवन वार
1: कवन सिरुति महा कवन जित हो आकार।

0: सकै कोई।
1: देखो खाए का खन पायो जाने जीतियां मैं खाए।
0: आपे जाने आपे दे आखे से पे के
1: बख्शे सब साला नानक पातशाही पातशाहू।
0: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये मूल भंडार।
1: लावे मुल लै जाहे मुल पाए मुला समाहे।
0: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान।
1: अमूल बख्शीश अमूल निसार अमूल कर्म अमूल फरमान।

0: गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध वेचारे
1: गति सती संतोखी गावह वीर करारे
0: गावन पंडित पंडर की सर जुग जुग वेता नाले
1: मोनिया मन मोहन स्वर्ग मश पायाले
0: गावन रत्नो पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले
1: गावह जोत महाबल सूरा गावह खानी चारे
0: गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: तेरी तुदनो गावह जोत पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नान क्या विचारे
1: सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जेनु पाई
0: कर कर वेख कीता अपना जिप तिसदी वड्याई
1: जो तुस भावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई
0: सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई
1: दा संदोख शर्म पत झोली ध्यान करै विभूत
0: किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एको
1: भंडार।

0: अशुद्ध है,
1: लोक है सुख है, कर्म है परम है,
0: अजीत है अपीत है, अबाह है अगाह है,
1: मान है निदान है नेक है फिर है,
0: कुछ अंग पयात शब्द,
1: नमो सर्वानि समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखिय पेवे,
0: नमो काले काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे,
1: नाथिन संगी परमाथे नमो।

0: करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
1: सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
1: सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहु
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पीखी के सर्वत्र पीखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोग है
1: सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पीस है
0: के सर्वत्र मानी है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: के सर्वंग कली में के फर्मंग फही में के आकल अला में के साहेब कला में
1: प्रभुक्त

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: जगत रहना है, जाके करण है, मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: सर्व संग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंड से है।

0: बास की उपख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
0: काहुला पान पूज तरयो सिर काहुला लिंग करे लटकायो।
1: काहु लख्यो हर

0: अवृत चा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो ये अस्तव शरणी परे दिन के दुष्ट दुख तो है मरे
1: परे तिहारे दिन के तुम संकट।

महाराज जी पावन बाणी पढ़ के हटे हैं जपजी साहब की। पातशाह जी उहदे विच कहिंदे ने, कहिण लगे, गावी है सुनी है मन रखी है भाओ भाओ तो भाव प्रेम। गुण गाउणे ते सुनने चाहीदे ने पर प्रेम विच। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिण लगे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रापायो, उहनूं प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। आरंभ विच पातशाह जी रहमत करदे, प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसे सुख पाया। प्रभु परमात्मा की शरण में जिहड़ा जीव आ जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सुखां का प्रवेश हो जाता है, सुखां का। गुरबाणी पढ़ते हैं बार बार बार बार गल आएगी शरण में, प्रभु परमात्मा की, पूरे गुरु की शरण में आने की लोड़ है। जिहड़े शरण में आ जाते हैं ढह ढेरी हो जाते हैं, अपना आप त्याग देंगे ने, उन्हों का दुखों का नाश तो सुखों का प्रवेश हो जाता है। पातशाह जी रहमत करते, गुरु अर्जन देव महाराज जी टोडी राग अंदर, सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी। असी शरण लैने पर किसी मनुख की शरण तक लैने। पातशाह जी कहन लगे, जिहड़े परमात्मा की शरण में आ जाते हैं उन्होंने दुख दूर होंगे ने। छोटी जी गाथा आप जी ने साझी करके समाप्ति। भाई साहब भाई नंद लाल जी, उन्होंने शरण तकी है औरंगजेब बादशाह दी, बड़ी तलीम है, विद्वान ने, हिंदू ने, ड्यूटी लगी है औरंगजेब बादशाह जी पुत्र नूं पढ़ाउण दी, उहदे विच ड्यूटी करदे ने, नौकरी करदे ने। एडी रहमत है मालक परमात्मा दी, तलीम बहुत है, उस्ताद ने। इत्थों तक विद्वाना लिखिया कहन लगे सोने दे बर्तना विच भोजन छकदे सी, नाल नौकर चाकर भी सी, बड़ी तलीम सी। अज एक आयत दे वधिया ढंग नाल अर्थ कर दिते, पुत्र नूं समझा दिता, पुत्र ने पिता नूं दस्या, कहन लगे अर्थ तैनूं कीने सिखाए ने, कहन लगे उस्ताद नंद लाल जी। ते पता लग्या ये नंद लाल कौन है, कहन लगे हिंदू, कहन लगे मेरे राज विच हिंदू होना नहीं चाहीदा। ते कह दिता, कहन लगे जां तां इस्लाम कबूल कर लो ते नहीं फिर तुहानूं मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। वजीर ने, मित्र भी ने, सलाह मशवरा किया, कहन लगी हुण तो एको रस्ता है, जां ते इस्लाम कबूल करना पवेगा ते नहीं फिर तुहानूं इत्थों छड के चले जाना पवेगा। कहन लगे जे जावांगा तां बाहर कित्थे जावांगा, सारे पासे राज ते इन्हां दा है, मैं पकड़िया जावांगा। कहन लगे नहीं, एक दर इदां दा है जिथे इस बादशाह दी चलदी नहीं। ओह किहड़ा दर? कहन लगे वह है आनंदा की पुरी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उत्थे विराजते ने, जे तू उन्हां दी शरण विच पहुँच जाए। तो कहन लगे कोई दुनिया की ताकत नहीं तुहानू उत्थों खो लवे, तुहानू मार दवे, जां तुहानू इदां दा गल होवे। कहन लगे फिर मेरी मदद करो। राते रात उत्थों निकले, रस्ता पेंडा तय किया, आनंदा की पुरी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोल पहुँचे ने। सतगुरु पातशाह जी कोल आ के नमस्कार कीती, ते कहन लगे महाराज मैं उत्थे ड्यूटी करदा, उत्थे रहना ते मैनू सेवा दिओ। कहन लगे साडे कोल इदां दी कोई इत्थे ड्यूटी है नहीं। कहन लगे इत्थे दी सेवा है जूठे बर्तन मांजन दी, लंगरां विच सेवा करन दी। कहन लगे जी मैनू परवान, उह सेवा दे दिओ। कहन लगे फिर उह सेवा कर लए। सतगुरु पातशाह जी जाणदे ने अंदर दा हुण मांजना है, धोना है, क्योंकि विद्वान बहुत है। इह कहन लगे फिर इत्थे सेवा कीती, टिके रिश्तेदारां नूं पता लग्गिया, वह आए, कहन लगे तू कित्थे आ गया। कहन लगे उत्थे सोने दे बर्तनां विच भोजन छकदा सी, तो इत्थे जूठे बर्तन मांजदा, पिछे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़े ने। सतगुरु पातशाह जी वल तेकिया ते कहन लगा महाराज इन्हां नूं पता नहीं, मैनू अपने गल नाल ला लो, मेरा होर कोई टिकाणा नहीं तेरे तो बिना। तो वह अज नंद लाल जी दियां जिहड़ियां रचनावां ने अज इतिहास अंदर मकबूल ने। तो जिथे गुरबाणी का कीर्तन करते हैं भाई गुरदास दी वारां पढ़ते, उत्थे भाई साहब भाई नंद लाल जी दे जिहड़े है वह भी जिहड़े शब्द जिहड़े उच्चारण कीते ने असीं पढ़ते हाँ। उत्थे उन्होंने एक जिहड़ी किताब लिखी सी बंदगीनामा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस किताब का नाम बदल के रख दिता जिंदगीनामा। कहन लगे जिहड़े किताब पढ़नगे उन्हां दी भाई जिंदगी बदल जाएगी। सो कहन तो भाव पूरे गुरु की शरण में जिहड़ा मनुख आ जांदा उहदे दुख दूर हो जांदे ने, सुखां दा प्रवेश हो जांदा है। गुरु पातशाह जी रहमत करन, पावन उपदेश साडे हिरदे अंदर वस जाण, अपनी शरण में टिका के सतसंग दीआं कड़ियां सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करन, नाम की दात बख्शिश करन जी, भुल चुक की खिमा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

अष्टपदी जाविकार कृष्ण दृष्टि ताप पापुण तप कहते होता जब धारी अपन संसमाद उदय बैर पुरुष के संकमात जाव इसका परम चेन जावत तब हर शोक किस व्यावत जापुण रब अपना आप आप पर ब्रह्म ता मोका किस परम बा आपन खिला प्रतीजा नान करने हा न दूजा जब हूत प्रभ केवल तरी तब बंद मुक्त का किसको कनी जब एक हर कम पात तब नरक सुर का कौन उतार जब दुर्ग प्रभ सह सवाए तब से सकत का कुत थाई जब अपे आप अपनी दो ज्योत रह तब कवन नडर कवन कत डर अपन तब करने हार उठ नानक ठाकर क्यों पार विनाशी सुखा पुनाश तय जमरण को का विनाशर जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रभ एक तब चित्र गुच किस पूछत लेखा तब नाथ रंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाध है अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूपा पी पर जा जन मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या दूता जय निरंजन निरंकार दरबान तय कौन को मान कौन अभिमान तय स्वरूप केवल जगदीश तय सह सब लगत को जी लगत को की सह जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भू कवन तृतावै कारण करावण करने हार नान करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तकुन माई बाप मित्र सुत पाई जय सर्प कलापे प्रवीण दया वेद देव का कूची नाय जब अपने आप आप उतारे तो सकन सकन का विचारे जय अपन ऊंचा अपना नेरा तय कौन ठाकर कौन कहिए जिरा विस्मन विस्म पर विस्माद नानक अपनी कद जानो आप जे अशल अशेद पीत समाया ऊहा किसे व्यापत माया पुष्क व्याप देस ते कुन का नाही प्रवेश जे के भगवंता तय कौन चिसला किस तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जे अपना पाप त्यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा भव्यंत ती ऊंचा नानक उसको आपे पुंचा जे आवरच प्रपंच कार ते गुण में किन विस्तार पापुन ते पे कहावत को नरक को सुरक मुशावत आ जाल माया जंजाल हो में परम पेपा दुख सुख मान मान कार की बखान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचित नानक के जी भगते आप जय पसरे प्रसाद प्रताप दुह पाखा पितनी उनकी सुभाव न बनी आपे कवत करे अणद चूज आपे रस भुग नर जो जिस भाव तिस नाए लावै जिस भाव तिस अपन नाए लावै जिस भाव तिस खेल खिलावै विसुमार था गणत तोले जो बुलाव नंग दास बोले सलूक है जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक को बसरिया दूजा कह दिष्टार इसपदी आप कथिया सुने हार आपे काप विस्तार जात भाव भावे तिष्ट पा अपने बाणे लै समाए तुम ते पिना कुछ होए अपन सुसल जगत परोए जाकु प्रभ जी आप जाए सच नाम सो जन पाए सुन सब धरती तत् का बेता नान सकल सिष्ट का जेता जी जंत्र सप्ता के हाथ दीन जान अदकु नाथ जिस राखै तिस कोई न मारै सुहुआ जिस मनु बिसारै तिस्ता जबर का को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जंग के सर्व हाथ अंतर

सुन संवाद अनहत तै नाद कह न जाई चर्ज संवाद तुम देखिया जो साब दिखाए नारक तुझा सो जी पाए सो अंतर सो बारे अनंत कड़कड़ व्याप्रया भगवंत तरण वाहे आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन प्रबत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कवन कर्म जैसी आग्या तैसा कर्म पवन पानी वह संतर माह चार कुंट दिशे समाये जिसते पुनि कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुत पाओ वेद प्राण स्मृत में देख ससी सुर नकत्र में एक बाणी रखी सबको बोले आप अडोल डोले सर्वका कर खेले खेर मूल न पाया गुणिया मूला सार वजूद में जाकी जूत हर स्वामी उत्पूत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में बसात संसना का नानक तिन में यह विसास संजना का पेखन सब ब्रह्म संतना के हृदय सब धर्म संत जना सुनो सो वचन सर्व व्यापी रावर संग रचन जिन जाता तस्की रात सच बचन साध सब को कहत जो जो हो सोई सुकमान करन करावन हार प्रभजन अंतर बसे बार पियो ही नाग दर्शन देख सा मोहि आप सत किया सब सत तिस प्राप्ते सगली उत्पात तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एक अंकार अनकलाल की न जाए निस पाए तिस ले मलाए कावन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जाप जनाए नाग जन आप जाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व ने ना पिख न हारा सगल समग्री जा का तना अपन जासा भी सुना आपन जाने खेल बनाया गया कारी की नी माया सबके मदल बतोर है जो किश कण सो आपे कहे आगे आवे आगे आ जाए नाम जा पवित लय समाए इसते हुए सुना ही बुरा उरे कहो कने कश करा अपना करतूत अदनी की आपै जाने अपने जी की आप साच ताई सब साच उत पोता प्रसंग राज ताकि गात मित कही ना जाए दूसरो इतासो जी पाए जिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक जान जो जाने चिस्ता होए या मलाए ले प्रभ सोए यो तनवंत कलवंत पंदवंत जीवन मुक्त जिस रिते भगवंत तान तान तन जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आवण का यो सुआउ जाने आवन का एह सो आओ जन के संगत तावे ना हुआ मुक्त मुक्त करे संसार नानक जन को सदा नमस्कार।

आसन त्यागो तरंग संत पिना की धूर मन मंग आप शुर बिनती करो सासंग अगुण सागत तरो हार तन के परलो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सारे आनंद सासंग पच परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण पुन गोबिंद अमृत रस पियो चित्व नारायण एक एक रूप जाके रंग्या अनेक गोपाल तमोदर दीन दयाल पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का आधार तुम सो श्लोक साधके बचन मलिक लाल रतन सुनत भावत होत आधार आप त्रैलोके निस्तार सफल जीव सफलता का संग जाके मन लागा हरंग जय जय शब्द नाहद वाजे सुन सुन करे प्रभकाजे प्रकटे कृपाल के माथे नानक उतरे तिनके साथे सारन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभला लाए मिट गया पैर बैर पै सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न पै कर दे पूर्ण वे सेव की सेव आल जंजाल विकार ते राते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक नबी की पुहमारी प्रभु की स्तुति करो सदमीत सावधान काकर चीत सुखमणी सारे गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सहोत नदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रधान प्रगट सब लोए सब तूज पाए स्थान पौरना होए आवन जान हर तन खाट जले जन सोए नानक से प्राप्त होए खीम सात रिद नाम निदा बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्धा विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान से स्तुत मिश्रान चार पदार्थ कमल प्रगास सब केवल सकल देवदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदसी एक दिष्टेता ए फल तस ए फल तिस जन के मुख भणै गुरु नानक नाम वचन।